0: 24 सिंगल रेमेडीज तैयार की जाती हैं 100% ऑर्गेनिक अड्डा से, जो मसनूई खाद और पेस्टिसाइड से बिल्कुल पाक है, जिसे निखारा है जर्मन साइंस ने। 24 सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, 75 सालों से आपका एतमाद।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: हंडे। लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, प्राइस सिर्फ 64,49,000।
3: And AGS tubular battery. Fill ko hai aaram.
4: And live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
5: And
6: HBL Freedom account. Jahan khaa, wahan HBL.
0: हर शोबे सिंगल रेमेडी का सफर शुरू होता है मखसूस हर्बल बागात से, जहां बड़ी एहतियात से काश्त की जाती है। जर्मन साइंस से निखरा ये मयार आप तक पाकिस्तान में पहुंचाते हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो शोबे सिंगल रेमेडीज, जिस पर पाकिस्तान करता है 75 सालों से एतमाद।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: हंडे। लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, प्राइस सिर्फ 64,49,000।
0: कुदरती अज्जा इंतहाई नाजुक होते हैं, इसीलिए श्वाबे जर्मनी दुनिया का जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस्तेमाल करता है, ताकि अज्जा का खालिसपन महफूज रहे और तासीर में इजाफा हो। श्वाबे सिंगल रेमेडीज जर्मन इनोवेशन और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, जिस पर है पाकिस्तान का 75 साल एतमाद।
7: सिवाज स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए राब्ता 0333-555-0001।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: हंडे। लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, प्राइस सिर्फ 64,49,000।
1: FM 100। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: हंडे। लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, प्राइस सिर्फ 64,49,000।
8: द बिग बेयर 100।
1: This program was brought to you by
9: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
6: एंड
5: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
0: हर शोबे सिंगल रेमेडी सख्त तरीन क्वालिटी चेक से गुजरती है, ताकि खालिसपन और असलियत बरकरार रहे, क्योंकि जब बात सेहत की हो तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, 75 साल से काबिले एतमाद।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: हंडे। लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, प्राइस सिर्फ 64,49,000।
9: And अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
5: एंड AGS ट्यूबुलर बैटरी, फिल को है आराम।
6: एंड

शिफा वहाँ से शुरू होती है जहाँ कुदरत मुस्कुराती है। श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार, जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुँचा रहे हैं। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो।

0: त्योहार ना हो। सारे जमाने में एक हम में एक तुम में दम।
1: FM 100 आपका

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: Schwabe Single Remedies तैयार की जाती हैं 100% ऑर्गेनिक अड्डा से, जो मसनूई खाद और पेस्टिसाइड से बिल्कुल पाक है, जिसे निखारा है जर्मन साइंस ने। Schwabe Single Remedies जर्मनी और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, 75 सालों से आपका एतमाद।

0: मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है कर वाले।
1: 100.1 FM, your location for maximum music.

0: listeners tell us about FM 100?
1: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
2: I listen because it has a lot of the songs that's often easy listening to for the work.
0: Number one music station. FM 100. 100. 100.
3: Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum.
4: जिंदगी और मौत का सवाल बार बार मेरे जहन में गर्दिश करता है। क्या किस्मत की तमाम ठोकरें सिर्फ मेरे लिए ही बनाई गई हैं? क्या किस्मत के तमाम चक्रों की गर्दिश खत्म कर देना ही जोहर मर्दानगी है?

0: Feel the sound. Feel the breeze.
1: Feel the breeze.
0: FM 100.

0: This is your music.
1: Whoa.

0: ट्रेडिंग ट्रस्ट मी ब्रो
1: नई स्कीम
2: कमिटी
3: लाड बनाए फरो
4: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो
5: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
6: शराइत ज़वाबित लागू है
7: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी स्पैमिंग धोखादेही बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना इस सिलसिले में मदद तलब करना किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया

نویلا ہے کس لیے اکیلا ہے بابے سے آخر کیوں بچی سٹ نہیں ہوتی.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: Trading, trust me bro.
2: Nice scheme.
3: Committee.
1: Lad barai faro.
3: Yeh muft ke investment mashware chodo.
4: Is Eid easy paisa term deposit mein invest karo. Aur 13% annual profit ke saath saath
3: 50,000 cash back jeetne ka mauka pao. Aasani se paise badhao. With easy paisa digital bank. Easy wala bank.
4: Sharaiton zawabit lagu hain.
5: हर शोबे सिंगल रेमेडी का सफर शुरू होता है मखसूस हर्बल बागात से, जहां बड़ी एहतियात से काश की जाती है। जर्मन साइंस से निखरा ये मयार आप तक पाकिस्तान में पहुंचाते हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो शोबे सिंगल रेमेडीज, जिस पर पाकिस्तान करता है 75 सालों से एतमाद।

It's not just music, it's an addiction. FM 111100.

0: पेंशन कई को लेता जानी सब मिलेगा सब मिलेगा।
1: कर बे खड़ी है किस्मत लेके नोट सारे।

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Trading, trust me bro.
3: Nice scheme.
4: Committee.
5: Lad badhaye faro.
6: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो।
4: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक। इजी वाला बैंक। शराइत जवाबित लागू हैं।

0: It's not just music, it's an addiction. FM 11100.
1: It's 12 noon. This time check is brought to you by
2: Yellow by JazzCash.
3: Abhi JazzCash app download karo aur Yellow ke through payment karo.
4: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

0: Kiki.
1: Music power on 100 FM.

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: इरशादे बारी ताला है, और ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होती जो सारी उम्र बुरे काम करते रहें, यहां तक कि जब उनमें से किसी की मौत आ मौजूद हो तो उस वक्त कहने लगे कि अब मैं तौबा करता हूं, और ना उनकी तौबा कबूल होती है। जो कुफर की हालत में मरे, ऐसे लोगों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। सूरह निसा

0: keep it here. We are putting the hits into high gear.
1: High gear.
0: FM 100.
1: The hits keep on coming.
2: Ek, do, teen, yellow. Ek, do, teen, yellow.
3: ये क्या है भाई?
2: एक, जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो. दो, जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो. और तीन, येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
4: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. येलो बाय जैस कैश.
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो.
5: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.
6: दिस इज योर म्यूजिक.

Mix. In the mix on the ones and twos. Live and direct. This is.

0: दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय
1: हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन प्राइस सिर्फ 64,49,000
0: It's 3 p.m. The Shine Check is brought to you by
2: ये लो बाय जैस कैश
3: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो
4: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए
5: टर्न ऑन द पावर दिस इज एफएम 100

है मेरा के अपने ही अक्से में छुपसा गया हूँ। जबसा मैं सबसा बनता ही जाऊँ, ऐसे ही कैसे मैं धसता ही जाऊँ, ऐसे ही कैसे मैं मरता ही जाऊँ, बिखरता ही जाऊँ, बिखरता ही जाऊँ, बिखरता ही जाऊँ, बिखरता ही जाऊँ।

कैसे? एक अदद मेरी मदद मुझे दे दो, मेरी कदर सारी हदें करूं, खत्म मैं पकाऊं मैं हदफ मैं तो पूरी करूं, कसर मुझे अपनी बात का असर मुझे मालूम, मेरे अजम मैंने खाई उसे कसम, मैं नहीं हूंगा मध्यम, मैं नहीं हूंगा मध्यम, मैं नहीं हूंगा मध्यम, मैं नहीं हूंगा मध्यम।

0: The Big Bear 100.
1: Across the nation, there is only 100 FM.

0: Secret FM, The Music Machine.
1: शिफा वहाँ से शुरू होती है जहाँ कुदरत मुस्कुराती है। श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार, जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुँचा रहे हैं। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो।
2: इट्स 24 आवर्स नॉनस्टॉप वाइब्रेशन, कनेक्टिंग यू,
3: कनेक्टिंग,
2: होल्डिंग यू,
3: होल्डिंग
2: विद FM 100.
4: FM 100.
5: FM 100.

0: location for maximum music.
1: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।

0: आसान।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
3: ये क्या है भाई?
2: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैज़ कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
4: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैज़ कैश।
2: अभी जैज़ कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
5: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: 24 सिंगल रेमेडीज तैयार की जाती हैं 100% ऑर्गेनिक अज्जा से, जो मसनूई खाद और पेस्टिसाइड से बिल्कुल पाक है, जिसे निखारा है जर्मन साइंस ने। 24 सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, 75 सालों से आपका एतमाद।
8: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
9: AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
8: एंड
10: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
8: एंड And
1: HBL Freedom Account, जहां खाब वहां HBL।
11: FM
12: 100। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
6: अजान असर पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावन से।
13: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। लाहौर और उसके मजाफात में नमाज असर का वक्त हो गया है।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: इरशाद बारी ताला है। मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। सूरह अनफाल

0: आसान।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
3: नई स्कीम,
4: कमिटी,
2: लाड बनाए फरोख,
4: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो।
5: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
7: शराइत ज़वाबित लागू हैं।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: हर शोबे सिंगल रेमेडी का सफर शुरू होता है मखसूस हर्बल बागात से, जहां बड़ी एहतियात से काश्त की जाती है। जर्मन साइंस से निखरा ये मयार आप तक पाकिस्तान में पहुंचाते हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो शोबे सिंगल रेमेडीज, जिस पर पाकिस्तान करता है 75 सालों से एतमाद।

0: It's 5:30 PM. This time check is brought to you by
1: Dettol Cool Soap. ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए.
2: जीते 20,000 रुपए. बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम अज कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका. जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके. शराइत जवाबित लागू है. अस्करी बैंक.
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.

0: लीजिए ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: अरे रे गर्मी का सताना, पसीने में नहाना, तो हाथ ना उठाना।
4: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो।
5: ये क्या है भाई?
4: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो। और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
6: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जैस कैश।
4: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
2: शराय तो जवाबित लागू है।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: कुदरती अज्जा इंतहाई नाजुक होते हैं, इसीलिए श्वाबे जर्मनी दुनिया का जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस्तेमाल करता है ताकि अज्जा का खालिसपन महफूज रहे और तासीर में इजाफा हो। श्वाबे सिंगल रेमेडीज, जर्मन इनोवेशन और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, जिस पर है पाकिस्तान का 75 साल एतमाद।
5: दिस इज योर म्यूजिक।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
2: नई स्कीम,
3: कमिटी,
1: लाड बनाए फरोख।
3: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो,
4: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। शरायत ज़वाबित लागू हैं।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: Kistan.
1: Ek, do, teen, yellow. Ek, do, teen, yellow.
2: ये क्या है भाई?
3: एक, जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो. दो, जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो. और तीन, येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
4: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. येलो बाय जैस कैश.
3: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो.
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
6: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का? अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक. अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना.
7: शराइत ज़वाबित लागू हैं.
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.

0: दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाए।
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
2: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।

0: पाकिस्तान।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
3: अरे रे गर्मी का सताना, पसीने में नहाना, तो हाथ ना उठाना।
4: 1, 2, 3 येलो, 1, 2, 3 येलो।
5: ये क्या है भाई?
4: 1, जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। 2, जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और 3, येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
6: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
4: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: हर शोबे सिंगल रेमेडी सख्त तरीन क्वालिटी चेक से गुजरती है ताकि खालिसपन और असलियत बरकरार रहे, क्योंकि जब बात सेहत की हो तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होमियो पाकिस्तान, 75 साल से काबिले एतमाद।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
5: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।

We believe in that radio speaks. FM 100, 24 hours, live radio station.

0: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
1: नई स्कीम,
2: कमिटी,
0: प्लाट बनाए फरो।
3: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो,
2: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। शरायत ज़वाबित लागू हैं।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
5: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
7: शराय तो जवाबित लागू है।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: मुसलसल तहकीक और यकसा मयार के साथ बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात की फरहमी, 160 साल से दुनिया भर में शफा की एक शानदार रिवायत। शोवे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो, 75 साल से पाकिस्तान में काबिले एतमाद।

0: It's 6:30 PM. This time check is brought to you by
1: Dettol Cool Soap. ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
2: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
3: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है।
4: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओ और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
5: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मनसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
6: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
7: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
8: खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्प लाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
9: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर। इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
10: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।

0: मुकाबले दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम अज कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।

0: भुगतान।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।

0: पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
2: ये क्या है भाई?
1: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
1: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
4: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
5: शरायत ज़वाबित लागू है।
6: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: मुसलसल तहकीक और यकसा मयार के साथ बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात की फरहमी, 160 साल से दुनिया भर में शफा की एक शानदार रिवायत। शोवे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो, 75 साल से पाकिस्तान में काबिले एतमाद।
9: सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए राब्ता 0333-555-0011।
10: No hip hop,
11: no.
10: No alternative,
11: uh-uh.
10: Just the best country mix on the radio.
12: FM 100.

0: पाकिस्तान।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
3: नई स्कीम,
4: कमिटी,
2: लाड बनाए फरो।
4: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो,
5: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: शराइत ज़वाबित लागू हैं।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: 1, 2, 3 ये लो, 1, 2, 3 ये लो।
8: ये क्या है भाई?
7: 1, जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। 2, जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो। और 3, ये लो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
9: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जैस कैश।
7: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
10: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
11: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
12: शराय तो जवाबित लागू है।
10: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
13: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
14: Yeh paigham hukumat-e-Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.

0: तक 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसे डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: शराइत ज़वाबित लागू हैं।
2: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
3: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
4: शराय तो जवाबित लागू है।
5: सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए राब्ता 0333-555-0011।
6: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
7: ये क्या है भाई?
6: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
8: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश।
6: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
9: where it's all about more barn

0: पाकिस्तान
1: ट्रेडिंग ट्रस्ट मी ब्रो
2: नई स्कीम
3: कमिटी
1: लाड बनाए फरो
4: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो
5: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ

0: The song, Blaster.
1: Blaster.
0: The music, Master.
1: Master.
0: FM 100.
2: Call me.
3: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।

0: पाकिस्तान।
1: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
2: शराय तो जवाबित लागू है।
3: 1 2 3 येलो, 1 2 3 येलो।
4: ये क्या है भाई?
3: 1 जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। 2 जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और 3 येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
5: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश।
3: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
6: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
7: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
8: आजाने इशा पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावन से।
9: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लाहौर और उसके मजाफात में नमाज इशा का वक्त हो गया है।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: इरशाद बारी ताला है और आसमानों और जमीन की छुपी चीजों का इल्म अल्लाह ही को है और तमाम मामलात उसी की तरफ रुजू किए जाएंगे, तो उसी की इबादत करो और उसी पर भरोसा रखो और जो कुछ तुम लोग कर रहे हो तुम्हारा परवरदिगार उससे बेखबर नहीं। सूरह हूद।

0: से हाथ उठाना।
1: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
0: हाथ है उठाना तो डेटॉल कूल से नहाना।
2: 1 2 3 येलो, 1 2 3 येलो।
3: ये क्या है भाई?
2: 1 जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। 2 जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और 3 येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
4: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
5: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
6: This program is brought to you by
5: Hyundai Laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Price, sirf 64,49,000.
7: The heartbeat of Pakistan. This is FM 100.
8: We play

0: 100.10 FM, your location for maximum music.
1: It's 9:15 PM. This time check is brought to you by
2: Aasani se paise badhao with Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
3: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
4: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
5: शराय तो जवाबित लागू है।
6: दिस प्रोग्राम

0: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
1: ये क्या है भाई?
2: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
4: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो।
5: नई स्कीम,
6: कमिटी,
7: लाड बनाए फरो।
6: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो।
8: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
9: शरायत ज़वाबित लागू हैं।
10: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
11: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का? अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
12: शराइत तो ज़वाबित लागू हैं।
13: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
14: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है।
15: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओ और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
16: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मनसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
17: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
18: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
19: खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
20: सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए राब्ता 0333-555-0001।
21: This program is brought to you by
10: Hyundai Laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Price? Sirf 64,49,000.

0: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
1: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
2: शराइत जवाबित लागू हैं।
0: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
0: हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, प्राइस सिर्फ 64,49,000।

0: से हाथ धोना उठाने।
1: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
2: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो।
3: ये क्या है भाई?
2: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो। और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
4: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जैस कैश।
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
5: This program is brought to you by
6: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition, price sirf 64 lakhs 49,000.
7: This is your music.

0: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना। शराय तो जवाबित लागू है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीम यार खान, मुल्तान, अबटाबाद, across Pakistan. This is FM 100.
2: एक मेरी पसंद का आपको गाना सुना रही हूँ, उर्दू का।

0: सुन रहे हैं FM 100 आपका अपना रेडियो स्टेशन।
1: There's no other station like 100 FM.

0: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
1: ये क्या है भाई?
2: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

0: साथ
1: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
0: हाथ है उठाना तो डेटॉल कूल से नहाना।
2: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
3: शराय तो जवाबित लागू है।
4: सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल बराए रब्ता 0333 555 0011।

0: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
1: शराय तो जवाब लागू है। This is your music.

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय AGS ट्यूबुलर बैटरी। दिल को है आराम।

विवाद स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल बराए राब्ता 0333555001।

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100.

FM 100.

وأنزل من السماء ماء فأخرج به